ऐसे मेरा रमना को खानी वो माँ से था मना को करूँ रिका से मेरा रमना को कामी हो रिके मरे मानु की सुन ले मेरा मरमा वाई या का गोली मले लावले मरमा वाई या का गोली मले लामीबा अम्मू इधर मल्ला को ऐ इधर रचना ऐ इधर गुलुआ ऐ तुम्हारी हो बजाया ऐ रोवा में कुआं जाया ऐ हाले नरवानुं ऐ हाले नरवामाए किरुए सीमा कवा पचागा किरुया नगी वेट यो मामनो वही लगा किरुया नगी वेट

मैं यह गामानो है। असमेरा गमना की होगा रुमानो ये ओरेरा हुई तो कहीं ओरेरा मरिमा ओरेरा हुई तो कहीं ओरेरा मरिमा ओपने लिवा कहीं ओरा जेने ओपने लिवा कहीं ओखा लोरा था